बहनों और भाइयों, संगीत का सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन बात करेंगे आदत या आदतें के बारे में। आइए दोस्तों, एपिसोड शुरू करने के पहले सुनते हैं ये गीत, दिल पुकारे आरे आरे, फिल्म ज्वेल थीफ, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन और इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, हम एक पहेली से शुरू करेंगे। पहेली ये है, मैं आपका निरंतर साथी हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा या तुम्हें असफलता की ओर खींचूंगा। मैं हूँ पूरी तरह से आपके आदेश पर, मैं आसानी से प्रबंधित हो जाता हूँ। आपको मेरे साथ दृढ़ रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है क्लू नंबर वन। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो चलो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये गीत। सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, फिल्म जवानी दीवानी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

बहनों और भाइयों, आइए चलते हैं क्लू नंबर टू पर। मुझे दिखाए कि आप कैसे कुछ करना चाहते हैं और कुछ पाठों के बाद मैं इसे करूंगा खुद ब खुद। मैं सभी महान व्यक्तियों का सेवक हूं और अफसोस सभी असफलताओं का भी। जो महान है मैंने उन्हें महान बनाया है, जो असफल है मैंने बनाया है उन्हें असफल। तो दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आइए सुनते हैं ये गीत। सुंजा हाथ ठंडी हवा, फिल्म हाथी मेरे साथी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

बहनों और भाइयों, मैं आदतों के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आदतें वे चीज हैं जो हम बार बार करते हैं। अधिकांश समय हम शायद ही जानते हैं कि हमारे पास वे है। हमारे जीवन में वे शक्तिशाली है क्योंकि वे सुसंगत और अक्सर अचेतन पैटर्न होते हैं। वे लगातार प्रतिदिन हमारे चारित्र को व्यक्त करते हैं और हमारी प्रभावशालिता या अप्रभावशालिता उत्पन्न करते हैं। तो

आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत। प्यार का समय कम है जहां, फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन, और इसे गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

एक मशीन नहीं हूँ, हालांकि मैं मशीन की पूरी सटीकता के साथ काम करता हूँ। आप मुझे लाभ के लिए चला सकते हैं या मुझे बर्बाद करने के लिए चला सकते हैं, यह नहीं बनता है मेरे लिए कोई अंतर। मुझे ले जाओ, मुझे परीक्षित करो, मेरे साथ दृढ़ रहो और मैं दुनिया को तुम्हारे चरणों में रखूंगा। मेरे साथ सहज रहो और मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कुछ समझ में आया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत, कांची रे कांची रे, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन, और इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

बहनों और भाइयों, आदतें तीन टाइप के होती हैं। कुछ आदतें अच्छी हैं, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, आगे की योजना बनाना, बड़ों या दूसरे का सम्मान करना, ये है अच्छी आदतें। कुछ आदतें बुरी होती है, यानी कि नकारात्मक सोचना, हीन भावना रखना, दूसरों को दोष देना, ये बुरी आदत है। और कुछ ऐसे आदत है जो मायना नहीं रखती, जैसे कि न्यूज़पेपर को अंतिम पन्ने से पढ़ना शुरू करना या रात को नहाना, ये आदतें हैं जो जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, कांटों से खींच के ये आंचल, फिल्म गाइड, गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार एसटी बर्मन, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, आदतें क्या है इस पर निर्भर करते हुए हमारी आदतें हमें या तो बना देगी या तोड़ देगी। दोस्तों, ये हमेशा याद रहे, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। आदतें हमारे ऊपर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं। एक आदत को तोड़ने के लिए इच्छा शक्ति से थोड़ी अधिक की आवश्यकता होती है और हमारे जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करनी पड़ती है। लिफ्ट ऑफ के लिए एक जबरदस्त प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब हम गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बाहर निकल जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता एक नया आयाम लेती है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, जा जा जा मुझे ना अब याद आ। फिल्म प्रेमनगर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एसडी बर्मन और इसे गाया है किशोर कुमार ने।

ज्यादा मजबूत है, इसीलिए हम उन्हें बदल सकते हैं और आदतों को सीखा जा सकता है। आप एक बुरी आदत को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा संभव होता है। तो दोस्तों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई एपिसोड के साथ, जहां हम आदतों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।